0: यूजलेस।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: तू गाती है?
1: मेरी फैमिली में चाहे किसी का भी बर्थडे हो, मुझे तो गाना गाना ही पड़ता है। बहुत सारे गाने आते हैं मुझे।
0: मैं कनाडा भाग गया सिंगर बन।
1: हाँ,
2: रात बराती कंधा कोठे टप टप के जाना, तू सोखा समझे लगिया तोड़ निभाना।
0: तेरी बात।

0: ¿Tu gati?
1: मेरी फैमिली में चाहे किसी का भी बर्थडे हो, मुझे तो गाना गाना ही पड़ता है। बहुत सारे गाने आते हैं मुझे।
0: मैं कनाडा भाग गया सिंगर बन।
2: रात बराती कंधा कोठे टप टप के जाना, तू सोखा समझे लगिया धोल निभाना।
0: तेरी बात।

0: nada?
1: Nice. Sweet. Sister type. थोड़ा गरम गा सकती है?
2: देख, मैं बताऊँ।

0: qué pan?
1: Mira, capos.
0: No. लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला है।
1: अब क्या करें?
0: जो भी करेंगे एक साथ करेंगे।